प्रारंभ की थी। पवित्र शरण जी ने अष्टपदी के आरंभ के अंदर जो उपदेश सिद्ध कराया पुरातन जुगा की समिति बांधु मुताबक वो कह रहे हैं कि सातयुग में दान की प्रधानता थी, तरीके में लोग याद करते हैं, द्वापर के अंदर देवतिया की पूजा करना है, जिसनों काली योग शब्द बनिया है, इस समय के अंदर परमेश्वर जी नाम की ही बनिया है। फिर वो एक सवाल करते हैं राहुल जी को, कुछ शास्त्रा के दसे हुए कर्म कांड का कार्य है, पर मैं कोई एक गल समझाओ कि इस भाव साधन को आत्मा पार के नहीं करा, कि एक संसार सुंदर तरिया जा सकता है, जिसके नाल बंदे के आम जान का जो चक्कर है आवा गम जिसको आत्मा कहते हैं ये तो बंद कला की हो सके। कल तक अभी भी जा रहा है, इस तो अगे जो अभी अब पवित्र पदे बड़े एक बेनती है, इस भगत जी ने वेदांत या शास्त्रों के दसे हुए कर्मों का जिक्र किया, तू अपने कर्म मैं दसी जा रहे हैं कि आ काम करो आ काम ना करो, कहने की तो गल दस इन्होंने कर्मा के अकर्मा की विचार कर रहे कर इमानदारी दस तेरे अंदर की तरक्की की नहीं हुई कि तेरे अंदर की मैल उतर गई, तू धर्म ग्रंथ भी सुन रहा है पर तेरे कर्मा के अंदर शंके पैदा कर सकते हैं, शंकिया के नाल भव सागर तरिया नहीं जा सकता। अगे फिर भगत जी ने कहा तू शास्त्रा की विधि मुताबक तीर्थ इनाम से जोर दे रहे हैं पर बाहर का रोज पिंडा धो रहे हैं, अंदर वाल झाकी मार के दे अंदर की महल का गंगा की तुलसी मार के दे रही है। यह अभी पवित्र वचन में विचार है क्योंकि अब छोटा जहा खंडन वाला पखा है, कहते भी जब अभी यह कुछ विचार करने मन कि आ जाता है शायद किसी एक सिद्धांत से किसी एक धर्म के किताब से नहीं, अभी धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कलगी धर स्वामी जी की रचना बाणी कुछ विचार करने का यत्न करा, आप जितने गुरु चरणा अंदर शोभाए मान को करोगे पास कोई भी रचना हजूर के बख्श किए हुए नाम तो बिगड़ी बाकी ना रहे प्यार।

सुरत कमाई, सब कीमत मैल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखां कियां वडियाइया, तुद विण सिद्धि।

ये श्रेष्ठ कार नूं कमाउंदा। नहीं तां इंसान एक दूए दे बस स्वार्थां दे वी तां काम बहुत करदे आ। हुण माया वास्ते जो लोक देशां प्रदेशां 12-14 घंटे टीटियां करदे आ, टोकरी ढोंदे आ, ते जे कह दिओ इत्थे 10 मिंट बह के बाणी पा लो, नाम जप लो, बाबा जी वो जरूरी काम सी इस करके छुट्टी दे दी, यह जरूरी काम पै जाना, नाम जपना जरूरी काम नहीं। इस वास्ते उधर नहीं तुरदा, वेखदा उधर वेख लो दिन रात मजबूर बनया, इस तरह बोझा चकदा, टोकरी ढोंदा, तो गुरु की सेवा वालों कन्नी कतरा। जेडे पूरे जाने जिन्हों के अंदर पूरे गुरु का प्यार आ, वो कार कमाते, वो ही सेवा करते। अखुट नाम धन हर टोट न होई, ऐसे सदा सुख का सोभा होई। कहिंदे परमेश्वर का जिहड़ा नाम रूपी धन है ये खुट है, इहदे च कदी टोट नहीं होंदी। कहिंदे जिन्हां नूं नाम धन प्राप्त हो गया उन्हां नूं इत्थे इस लोक च भी सदा सुख हुंदा, पर लोक जिहड़ा सच्चे का दरबार आ उत्थे भी उन्हां दी सोभा वड्याई हुंदी है। ये मन मेरे भरम न कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहो। कहिंदे हे मेरिया मना, तू अपने चित विच भरम ना कर। किहड़े भरम च पिया, क्यों नहीं अमृत छकदा, क्यों नहीं बाणी पढ़दा, क्यों नहीं नाम जपदा, क्यों नहीं सेवा करदा, क्यों लोक लाच फसिया। कहिंदे मुखी जिहड़े सतगुरु आ उन्हां दी जिहड़ी सेवा करने नाल इह जिहड़ा कहिंदे नाम रूपी अमृत है इहदे रस नूं पी ला, तू करसां विच लगा है, इहनूं पी के दा देख, तैनूं पता लगेगा इहदा आनंद की है। सतगुरु सेव है से महापुरख संसारे, आप उधरे कुल सगल निस्तारे। कहिंदे जिहड़े सच्चे सतगुर सच्चे पाए सेवा करदे ओ सतंता योग आ। कहिंदे उह संसार दे विच वड्डे महापुरख, उन्हां दी गिणती उत्तम पुरखां विच होई नहीं। पुरख तां सारे ही आ, महापुरख सारे ने। महापुरख होई आ जिहड़े सतगुरु की हुकम रूपी सेवा करदे। कहिंदे उह जिहड़ी सेवा दे प्रताप करके आप भी तर जांदे आ, कई अपने कुलां नूं नसारे मने उन्हां नूं तार लैंदे। हर का नाम रख है और धारे, नाम रसे भौजल उतरह पारे। वह गुरु कहने कहते सदा वास्ते अपने हिरदे परमात्मा के नाम नूं धारी जा। कहिंदे उह जिहड़ा परमेश्वर नामी है उहदे च रसे हुए उह संसार समुद्र तों पार उतर गया। साधुवर सेव है सदा मन दासा, हमें मार कमल प्रगासा। कहिंदे जे मन विच दासा भाव आ जाए ना, इस भाव नूं धार लिया जाए। और दूजी बीमारी हैगी हंगता की, ममता की, इहनूं मार ले। वह कहिंदे सदा वास्ते फिर सतगुर की सेवा करनी, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा फिरदा कमल है वह प्रगासा मैंने खिड़ जाता है। जिन्हां दे अंदर फिर ये दासा भाव नहीं आता, सेवा करनी औखी बड़ी है। ये कहो मैं प्रधान हाँ, मैं चौधरी हाँ, यह तो बहुत औखा सेवा करनी। वो तो फिर दूए नल करूगा, कर लाओ खाला एवं नहीं किया, एवं नहीं किया। जिहड़ा दास है सेवा उही करूगा। है ये पंथ बना सी दासा का, हूँ कहते फलाना का मैं मुखी हूँ, फलाने का मुखी, मुखी बन गया सारे, दास बन को कोई तैयार नहीं है जी। तो धन गुरु रामदास कहते दासन दासा करो राय, ये राज प्रकाश में दासा का दास, दासा का हूँ साध जना का कीड़ा, हूँ कोई दास बन तैयार नहीं। कि दास बने बिना गल बननी नहीं, प्रकाश होना नहीं। अनहद वाजिया निज कर पासा, नाम रथे कर माए उदासा। इस वास्ते कहते अनहद वाजिया, अनहद नाम हुंदा जिहदी हद सीमा नहीं। एक रस ये नामा रूपी बाजिया के पातशाह कहते बजन करके उन्होंने कहते फिर जो सुरूप रूपी घर आ, आत्मा चिंतन करते आत्मा च भेद हो जाते हैं। नाम रत्ते मम्मी ने सहारी नामी हिंदी दे लिया जाना, नामी जिहड़ा परमात्मा उहदे च रत्ते मैंने जदों मिल गए तो फिर घर के रेंदे भी वह बरागत महात्मा में उदास रहेंदे, नरले प्रवृत्ति च रेंदे। सतगुर सेव है तिन की सच्ची बाणी, जो जो भगती आख विखाणी। कहिंदे जिहड़े शरदा भगती दे नाल जी पूरे सतगुर सच्चे पातशाह चरण जाके सेवा करते हैं, वो फिर रसना तो जरा बचन बोलते उन्होंने बाणी भी सच्ची है, जो बोल देंगे वो पूरी हो जाती। जिमें बाबा ऐसी ना गोदड़िया जी करते हैं कहते सरों फुटन ला लिया, कहते बाबा जी की करते हैं, कहते इन्हें जड़ा फुटना, वो बचन जरा कट देंगे पूरा। एक दिन वो गौरे ने कहते कहा भी एवं नहीं एवं कर, कह लगे तेनों फारा क्यों पाया, उसके फारा पै गया, ये माफिया मंगे मारे पक्ष लो। फिर उन्हें गए तो पूर्ण पुरख्या इन्होंने धक्का ना करा, वो इस वास्ते अपने आनंद स्वरूप जाए जो वचन बोल देंगे वो पूरा हो जाता।

अरे खंडो हो अनक विधि समझाव हो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरदर खाव हो। तुमरी शरण तुम्हारी आस्था, तुमरी शरण तुम्हारी आस्था, तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला, नानक घर।

जिस आग्या प्यारी जाए कहां रहाओ, सेवी साहिब अपना हवर ना जांचो कोई। नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए, साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुख चुख होए। रहाओ तनासरी महला पहला, हम आदमी हां एकदमी मोहलत।

जैसी नदर करे तैसा होए, बिन नदरी नानक नहीं कोई। तनासरी महला पहला, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए, हर त्यों चित लागे फिर कार ना खाए। रहाओ सच सिमरिया हुए।

तिसे आगै धरै साहिब भावै सो परवान सो सेवक दरगाह पावै मान सतगुर की मूर्त हिरदै।

बोलन चखण होए, विण बोले जाड़ सब सोए रहाव। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जिहवा दित्ती बोले तात। जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। जीता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालख द

सो जोगी जो जुग तपछाणे गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का तप था नष्ट जग प्रिष्ट होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी तामी तह नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करहें वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती टूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो एको सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंद बिन सहस तव गंद इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसके चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारिं को होए जाते तेरे नाम वासा तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन अखुट नान खुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाए गुर कृपा ते हर मन वसाए से तनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर तन पर गासिया हर कृपा ते वसै मन आए रहाओ।

सुख मानी अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखो भाई डुबदा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाय गुर प्रसाद वसै मन आय सब मह वसै प्रभ एको सोए गुरमति घट प्रगट होए सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिले मन मानिया तनासरी महला तीजा हर नाम धन निर्मल अत अपारा।

अभमान गुरमुख हर रस चाखै कोई तिस सदा आनंद होए दिन राती पूरे भाग प्राप्त होए रहाउ शब्द दीपक वरतै तिहो लोए जो चाखै सो निर्मल होए निर्मल नाम हमे मल धोए साची भगत सदा सुख होए जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख नाही कदे सोग आप मुकत अवरा मुक्त करावे हर नाम जपे हर ते सुख पावे बिन सतगुरु सब मुई बिल लाए अन दिन दाजह शांत ना पाए सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए नानक नाम शांत सुख पाए तनासरी महला तीजा सदा धन अंतर नाम संभाले जी जंत जिनह प्रतपाले मुक्त पदार्थ तिन को पाए हर कै नाम रते लिवलाए गुर सेवा ते हर नाम धन पावे।

साच नाम वडियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेला वा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मलाए।

कूड़क सत तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मन मुखे अंधे दुख विहानी, सतगुरु भेटे।

क्या पावा। तनात्री महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

कहाव गुरमुख करनी कार कमावे ताय इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैं गिल मिकदारा गुरी अंकस मार जवालन हारा मन असाद साधे जन कोई अचार चरे ता निर्मल होई गुरमुख एहो मन लया सवार हूं मैं विच हो तजे विकार जो तुर रखे अनमेल मलाई कदे ना विचड़े शब्द समाई अपनी कला आपे प्रभ जाने नानक गुरमुख नाम पछाने तनासरी महला तीजा काचा तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिखिया कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भव जल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रते अहनस बैराग चहो जुग मह अमृत साची बाणी पूरे भाग हर नाम समाणी सिद साधक तरस है सब लोए पूरे भाग प्राप्त होए सब किस साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप बिरड़ाए नानक आपे वेख आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए से जन तन जिन एक नाम लिव लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बच्चे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए।

का तन बहुत अभिमान, अहंकार डूबै न पावै मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत साला ही सच सोई। आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर ना कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार है जाओ

फेर पए किरपन को अब किस कृपा कीजै को दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करीजै पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी हमें ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह ना सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बेख मोर्चा लग संगत साध सुवारी ज्यों कंचन बैसंतर तायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उड़तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सुवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपेओ तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर।

कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारी गत मित कह ना सकह प्रभ, हम क्यों कर मिलह अभागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सद कुर्बानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब किल विख पाप ले जानी रहाओ, ऐसा संत साध जिन पाया, तेवड़ पुरख वडानी, तिनकी तूर मंगह प्रभ स्वामी, हम हर लोच लचानी, हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी, हर हर अमृत पी त्रिपता से, सब लाथी भूख पुखानी, जिनके बड़े भाग वाडी उचे, तिन हर जपे हो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तनासरी महला चौथा, हम अंधुले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता।

सब खर्च हर बंदुह मत जान हो आज के काली हर के संत जप हो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर हुए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलोह हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सकह अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो हो

ताप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तलासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जी।

0: केवोदी रंगीली टर्सी दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मरदे के मैंने कब कब जब मेरे पास खाते बचन ने अमृत बाणी भी पापी कर्म तमाम माड़े कम करते फिर रोना ते कल्पना ही और की करना।

दरगाह विच की हाल है। नानक ज्यों मथन मधानिया त्यों मथे धर्म राय भलिया। जे तेन संसार से जीवन मिले है ना तो सेवा करया कर, बंदगी करया कर, क्योंकि अति जरूरी है। कबीर साहब ने एक बचन कहा अमृत बाणी, कबीर की बाणी पढ़ी है ना, पंचम पातशाह ने बचन किया इस शरीर क्यों मिले है, इस शरीर में की करना बनता है, आओ श्रवण कर। गुरु सेवासी भगत कमाई, गुरु की सेवा वास्ते बंदगी वास्ते जीवन मिलिया सी, पर असि कित्थे लग गए, दुनिया के ऐसो इस लग के जीवन गवा लिया। गुरु सेवासी भगत कमाई तब के मानस दे पाई, किन्नी कीमती दे ही है। अंदर देवते होके भी सिमरन करते हैं सच्चे पातशाह, क्योंकि मरना तो देवत्या ने भी है ना। मेरे कलगीधर पातशाह के बचन ने चौपाई साहब वो फलिया, ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की, कहने शिवजी रोजी दे, महादेव जीवन से मौत का हिसाब रखता है, पर की वह शिवजी है, की वह ब्रह्मा है, की वह महादेव है, तो मेरे साहब गुरु कलगीधर पातशाह बचन करते हैं।

तो कैन तो पाल जिथे कीर्तन की समाप्ति हुई अज रिवाज है बहुत समय तो पे है यह रिवाज असल तो मेरे गुरु नानक ने पाया सी जो मरदाने का अंत समा आया ना साधु संगत तो खुरमा शहर की धरती खुरमा शहर की धरती से मरदाना कह लगा बाबा नानक हूं मैं जा रहा आख्या मरदाने हूं तो आप तलवंडियों जा आए हैं हूं कितने जाने आख्या मैं निज घर जा रहा मेरे गुरु नानक जानी जान पिता समझ गया आख्या मरदाने हूं तू जा रहे हैं आख्या हाँ महाराज जा रहे ते बाला सी कोल भरा सी यार सी मरदाने का तो कह लगा फिर मरदाने इन्ना भी दस दे किन्ने कु सुस बाकी इतने साखी भी चाहता कहने बाला के मरदाना कही था महाराज मेरे अठ सुस बाकी ने सची मुची अठ सुस आए मरदाने ने प्राण त्याग दते मेरे गुरु नानक पातशाह मोढ़े से चादरा रखते सन साध सिंह जी सिरों पाओ कहते हो वह सिरों पाओ ला के वह चादरा ला के मेरे गुरु नानक ने मरदाने सिर तो लैके पैर तक तकिया सिर तो लैके पैर तक सिरों पाओ दीन दुनिया का मालिक गुरु नानक पातशाह ने मरदाने सिरों पाओ दिता अज तो 100 रुपया देिए ना कहीं भाई सिरों पाओ दौ जी अगले नाना दिता सिरों पाओ इन इन्हें 100 रुपया नहीं देना पर मरदाने ने किन्ना समा सेवा की कोई पैसा मंगया नानक तो 38 साल जो गुरु नानक ने लंघी है ना गुरु नानक पातशाह तो मां आवाजा भी मार दी मरदाने भी मर जाने भी मर जाने कि गुरु नानक पातशाह लंघ पै कह लगे भोलिए माए ये किनू कोई आवाजा मार दी आख्या बाबा मेरे अगे पुत्र चले गए इन्हें भी तो मारी जाना ता मैं मर जाना कहीं गुरु नानक पातशाह कह लगे नहीं माए ने मर जाना नहीं कि मरदाना होगा आखो सतनाम श्री आख्या करो सत सिंह सतनाम श्री वाह तो कहीं साहिब गुरु नानक पातशाह ने उदो सिरों पा दिता अज जो भोग पिया कि संत करतार सिंह जी की वारी आई लोगों ने सिरों पाव दिते लए प्रधान प्रधान नेता शक्ति शक्ति दिता मायाधारियों ने सिरों पाव वंडे साध सिंह सिरों पाव वंडदिया वंडदिया जो संत करतार सिंह उन्होंने वारी आई हूँ सोची पै गई कि हूँ संतान नू महापुरुखों सिरों पाव किहड़ा देवे कि महापुरुखों तो वध कोई होवे ते तां ही है ना कोई ब्रह्म ज्ञानी मिले ते तां ही सेवा सिरों पाव दिता जा सके ना जो कोई ना देखिया कि सोच सोच के कह लगे भी उस वेले का मुख्यमंत्री जिहड़ा उत्थे सुशोभित सी कह लगे इनू बेनती करने भी तू बाबा जी नू सिरों पाओ दे सत्संग देखो मेरे कलगीधर पातशाह नू किहो जिहा खालसा चाहिए मैं वह बेनती कर रहा कि कलगीधर पातशाह ने किहो जिहा खालसा पैदा किया तो इहो जिहा खालसे कोई विरले हुंदे ने जिवें बाबा करतार सिंह उन्होंने डर होकर कह दिता तो की आख्या जो कह लगे बाबा जी साडा मन करता है कि आप जी नूं सिरों पाव दिता जाए कि मुख्यमंत्री साहब देणगे गुरु नानक दे दरों करो वसाए होए साहिब गुरु कलगीधर पातशाह दे लाडले सिख बाबा करतार सिंह जी कहण लगे भोलियो ये कोई सिख है इन्हूं पुछो ये झूठ नहीं बोलता इन्हूं पुछो हेरा फेरी नहीं करता मैनू उह सिख देवे चाहे गरीब होवे पर मैं सिरों पाव उस तों लवांगा जिहड़ा गुरु की बाणी पढ़दा होवे आखो सतनाम श्री वाह सिख लभ्या जिहड़ा साहिब गुरु पातशाह की बाणी नाल जुड़िया होया ते बाबा जी ने आवाज मारी सिंघा तू आ जा जो आवाज मारी ते सिख आया ते धन गुरु पातशाह दे लाडले सिख बाबा करतार सिंह जी कहन लगे सिंघा मैनू महसूस हुंदा है कि तू धन गुरु कलगीधर पातशाह दा सिख है तू बाणी ते बाणी दा पूरा है मैं चाहना कि एक मुख्यमंत्री नालों तू मैनू सिरों पाओ दे उत्थे बाबा जी ने गरीब सिंघण को दी पातशाही वाली गल की उत्थे उस सिख तो सिरों पाओ लिया ते नाल इह गल आखी सिंघा मैनू तेरे विचों कलगीधर पातशाह दा रूप जापते आखो सतनाम श्री वाह क्योंकि कलगीधर पातशाह ने कहा सी खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास।

पांच सत्त मिनट का समा बाकी रह गया सब की समाप्ति वाल वधीए क्योंकि साढ़े को बहुत ही महान कीर्तनी कथा ढाडी कथा आया हुआ आप उन्होंने बचन भी सुनने ने वो आप इतिहास जोड़न आओ अखीरलियां पंक्तियां श्रवण करो।

गुरु नानक मिशन अस्पताल है, उसे बड़ा बड़ा गुरुद्वारा है, चौंक है, बड़ा मेन चौंक है। तो कई बार रात में जो शुक्रवार, वीरवार, मंगलवार उत्थे लोग दीवा चुकाते सन, तो सिंघां नूं वेख्या बड़ी शर्म आई। दास ने कार खड़ी करके ना एक बचन कहा, दो तीन सिंह वेखे अमृतधारी कार चो उतरे, बाबे का प्रसाद चढ़ाया, झंडी चढ़ाई, तो कार च बह गए। मैं आख्या सिंह ये की हो रहा, ये गुरु की करनी है, तुहाडे गुरु ने तुहानूं कहा सी सिर्फ एक गुरु से भरोसा करो, ये समाज तो की लैण आयो। तो कहने तो भाव मेरे कलगीधर पातशाह ने बचन कहा, भलियो जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देहूं मैं सारा, ते भलिया जे तू नहीं ना मनदा तो फिर मैं भी तेरी पुछ पड़ताल नहीं करनी, जो मर्जी कर ले। अजो हाल हो रहा, अच्छा की पुछ पड़ताल है कि तेरी पड़ताल साड़ी।

आप दलित बनो मंगते मंगता बना कि सौखा पे मेरे साहब गुरपंच तुम पातशाह मंगते बने ते की मंगया आने बच्ची ने शोध पढ़िया हम पीखक पिखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम दियो मंगत चंक और कुछ नहीं मंगता नाम की झोली भरते सत्ते पातशाह।

असंख मूरकांड कोर असंख चोर राम तोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गड़बड़ हत्या कुमार।

जति सती संतोती गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़ रखे सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहन या मन मोहन सुर

नाम सर्व काम निर्वास रूप कार्य अनुकाय ओंकार रूप नाश रूप अनंगी नामे दर्पंगी त्रकामे सर्वर्गंधर्वादे गंजय गादे सुभंग सर्वभाग्य सर्वानरा के त्रिपुंस रूप है अस जय सूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नरपत प्रवाह है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है नरपत सदा है विपुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है चाचरी शांत अपंग है अनंग है बेखा लेखा परम कर्म है नाद है जुगाद है अजय है प्रय भूत है भूत है नासव दास दंध है बंध है अपागत है विरागत है नाश है प्रकाश है निजंत है विनंत है लेखा देख है अलेख है देख है कहा गाय संभ है गम है नीला नाद है नेत स्नेत जाद है जाद है जरपट छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग प्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग कर्मं सर्वंग दुक्ता सर्वंग मुक्ता प्रसाबल छंद प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे लंगंग रूपे भंगंग भूते परमादंग परमाते सदासे अगाध स्वरूप निर्वाध भूते रंगी नामे दृभंगी दृगामे

अकृताकृत अमृत अमृत अमृत अमृत करुणाकृत अकृताकृत धरणी धरत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत अमृत अमृत है जबाकृत अमृत अमृत है हर नायक है कल कायक है विश्वंबर है करुणालया है निरप नायक है सर्व पायक है बहु भंजन है अर्गंजन है जप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आदम वास है जस के जस है पिजंग प्रयासम नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो पर्व दत्तंग दत्तंग स्वरूपे नमो योग योगी नमो ज्ञान ज्ञानी नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादंगूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसी नमो भंग भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगीय नामे दृभंगी दृगाले अनंगीय कामे एक श्री छंद अजय अलय पय वय पूवजुवनाश काश गंज पंज लख पाख अकाल दयाल लेख पीख नाम काम घाटा नाथे प्रभाते अजोनि मोनि न रागे न रंगे न रूपे न लेखे अकारमंग परमंग गंज लेखे पुजंग प्रयात छंद नमाज कुल प्रणामे समाज कुल प्रणाशे।

करीमल कनिंदा समातुल निवासी जय भूते जय उदनी में हरियम करियम करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भूते सुजम पव सुदुम।

कृपा बेलो त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अकार बड़े बड़े आर बचारे सार की तार बसैया दूर देश मलंद महासन मत विचार के बाल मलैया गाड़ी गड़ान को तोड़ नहार उस बात नहीं जगजार रवैया साहिब श्री सब को सरनायको जाच का नेक सो एक दवैया।

महामूर्खस्य भेदं जानत महादेव कौकट सदा सेवो निरंतर का चिंतन देव आप अपनी बुद्ध है जेती मरमत पहनो पहन तो है पेटी तुमरा।

अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उभार सिख संगरो रोटिए ते उठ बदत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दोष दुख तहै मरे पुरख जवन भग परे त्या।

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततः सार न जानी, ततः सार न जानी गुरु बाजो ततः सार न जानी। तेही गुणी संसार कर्म सुता सुत्या रहन बिहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाई जिसनो अन दिन हरन बुलागे जागत रहन बिहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे सुख मनो वसारी है, मनो के वसारी है बुढ़दाता जी अगर मैं आहार।

कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन जाओ भया प्रभाग सुनिया हर मंगल गाओ सकी जरे मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सकिए सोख दुख न ब्यापे गुरचरण लागे जन सभागे अपना तर जापे।

प्रभु की आज्ञा मन है मत है उससे चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनेक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेक बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिन सह ओह मन पछतावे जो भी सह सो चालन हार लपट रहे होते अंध अंधार बताऊ स्यों जो लावे नेह तातो हाथ न आवे कहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सभाया मिथ्या हमें ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्ति अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया एक हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे मिथ्या नेत्र तीखत पर त्रे रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तामे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब कहे सफल देहे नानक हर हर नाम ले। बिरसी सातत की आर्जा साच बिना कह होवत सूचा बिरसा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन बिन रैन वृथा बिहाये मेघ बिना ज्यों खेती जाय गोविंद भजन बिन जिसे सब काम ज्यों कृपन के निरारस दाम तन तन तेजन जे कट बस्यो हर नाव नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नी प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर देख न काहू पीन अवर उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्मै मरे जिसके अंतर बसे निरंकार किसकी सीख करे संसार जो तुम पाने जिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पर आता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपह माने आपह आप करत निवेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे किस लय लड़ लाए थान थनंतर रहा समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह विंस जाय अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहि जिस ठाकुर को रख मन माहि जिस जे प्रसाद सुगंधित तन लावे जिसको सिमरत परमगत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदिर जिसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। ये प्रसाद पाठ पटंबर हडावें तिसे त्याग कत अवर लुभावें ये प्रसाद सुख से ही सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। ये प्रसाद तो सब को माने मुखता को जस रसन बखाने ये प्रसाद तेरो रहता तरम मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पथ खेती कर जावे। ये प्रसाद आरोप कंचन देही लिव लाहो किस राम स्नेही ये प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत ये प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके। ये प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। ये प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकि भगत करे ये प्रसाद आभूखन पैरी जय मन इस सिमरत क्यों आलस की जय। ये प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी मन इस प्रभ को कबू ना बिसारी। ये प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसह तिहाई तिसह तिहाए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है।
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ।

ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी किस प्रभ को सास सास चितारी, ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, ये प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, ये प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह, ये प्रसाद सुने करन नाद ये प्रसाद तिखे विस्माद, ये प्रसाद बोले अमृत रसना ये प्रसाद सुख सहजे बसना, ये प्रसाद हस्त कर चलहे ये प्रसाद संपूर्ण फलहे, ये प्रसाद परम गत पावहे ये प्रसाद सुख सहज समावहे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो, ये प्रसाद तू प्रगट संसार किस प्रभ को मूल न मनो विसार, ये प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताको जाप, ये प्रसाद तेरे कार्य पूरे किसे जान मन सदा हजूरे, ये प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तां से और राच, ये प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाव आप गाव आए सो हर गुण गाओ, प्रभ कृपाते होए प्रकाश प्रभु दयाते कमल विगास, प्रभ सुख प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दयाते मत उत्तम होए, सर्व निधान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हू लया, जिजित लाभो चित लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ, श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोय जो जो कह सो मुक्ता होय, सुन गीता नानक बेवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी, साध के संग मुख उजल होत साध संग मर सगली खोत, साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटै सु ज्ञान, साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माँ है समानी, साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर खुले, साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस गुंचा, साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू तावे साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सुख प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब नीत साधु के संग महापुनीत, साध संग किस योनी बैर साध के संग न बीगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप साध के संग पजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई, साध के संग न कबहू तावे साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजार सह, साध के संग बस थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग बिरड़ा सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है, साधु के संग सो तन पावे जिस धन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सो बासुर देवा, साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कछ घाल दर्शन पेटत होत निहाल, साध के संग कलूखत हरे साध के संग नरक पर हरे, साध के संग इया ऊहा सुहेला साध संग विचरत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरसा जावे, पार ब्रह्म साध हृदय बसे नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ
साध कै संग न मनती बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग कट कर गीठा साध संग तय आज्ञाकारी साध संग गद तई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद ना जान है जेता सुन है चेता बख्यान है साध की उपमा क्यों गुणते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच से ऊंची साध की शोभा मूच से मूची साध की शोभा साध बाने आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोय अवर न देखे एक बिन कोय नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे कुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीज एक यो बसदा को खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे सर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै नित्य सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ले ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सृजन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म तिहान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै वे सो पला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कै वे अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे तब आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़पागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माँ है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथ्य न जाए अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की नित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्धार है जो अंतर नाम सर्व मैं तिख है भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है नानक ओह अपरस सगल निस्तार है
अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रे रूप न पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद लिखिया पर हरे मन की बासना मन ते चरे इंद्री जिस पंच दोह ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपर्श वैष्णो सो जिस ऊपर सुख प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पिन कर्म कर्त हो वह ने कर्म इस वैष्णो का निर्मल कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाच है केवल भगत कीर्तन संग्राच है मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ है अवरह नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पे विष्णु परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कह उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमृत बुझे मूल सुख मह जाने अस्थूल क्यों वरना कहो दे उपदेश नानक उस पंडित कहो सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान क्यों वरना मह जपै को नाम जो जो जपै किसकी गत होए साध संग पावे जन कोय कर कृपा अंतर उर्धार है पशु प्रेत मुगद पाथर कौतार है सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कित न पाई है धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कह मन पार ब्रह्म का निवास किसका राम सत राम दास आत्म राम किस नदरी आया दास संतन पाए किन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे किस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सौ कहावे तैसा हर्ष तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जित जित घर राख है तैसा तिन नाव आपते कर्म करावन जोग प्रभ पावे सोई फुन होग पसरियो आप होए अनंत तरंग लखे न जाह पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक तहे निहाल श्लोक उस्तत कहे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट मन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसुर होते कई कोट आत्म ध्यान तार हैं कई कोट कब काब विचार हैं कई कोट नवतन नाम ते आवे हैं नानक करते का अंत ना पाम है कई कोट तय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिज्ञ आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरें कई कोट पर दुख न करें कई कोट माया श्रम माह कई कोट प्रदेश प्रमाह जित जित लावहो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस होगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाय कई कोट पवन पानी बैसंत्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट सखिर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल सामग्री अपने सूत तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे।
कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत और शास्त्र, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जह किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूक्र मृगाच, सब ते नेरे सब हूते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाना तय तय राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट तय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहनते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत तीनो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट तीने बहु पांत, प्रभ ते होए प्रभ माह समात, ताका अंत ना जाने कोई, अपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेटे, सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सद सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गाम है, आत्म रस सुख सहज समाम है, अपने जन कहो सास सास तुम्हारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहारण है, जल थल मैयल सोए अष्टपदी, कर्ण करावन करना जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन मह थाप उथापन हारा, अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तार अधर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अंत रंग प्रकार, कर कर देख है अपनी वड्याई, नानक सब में रहा समाई, प्रभ पावे मानुक गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर त्रावे, प्रभ पावे बिन सास ते राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे, दुहा श्रेया का आप स्वामी, खेले दिगसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मानुखते क्या हुए आवे, जो किस पावे सोई करावे, इसके हाथ हुए ता सब किस ले, जो किस पावे सोई करे, अन जानत दिखिया मैं रचे, जे जानत अपन आप बचे, परमे पूला दै जिस तावे, निमख माह चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी पवित दे, नानक ते जन नाम मिले, किन में नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे, किस तत्काल दै दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीश, ताका लेखा न गणे जगदीश, यो पिंड सब किसकी रास, कट कर पूरन ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल ना ही इसे हाथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावे सोई फुन थियो, कब हूँ ऊंच नीच में बसे, कब हूँ सोग हरख रंग हसे, कब हूँ निंद चिंद व्यवहार, कब हूँ ऊब आकाश कयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत्य करे वो पांत, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होत रवाल, कबहू ओए बह बड़ राजा, कबहू भिखारी नीच का साजा, कबहू अब कीरत में आवे,
कबहू भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखै तिव ही रह। गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहू होए पंडित करे बख्यान। कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ इशनान। कबहू सिर साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया। अनिक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे। ज्यों प्रभ पावे तिवै नचावे, जो तिस पावे सोई होए। नानक दूजा अवर न कोय, कबहू साध संगत एहो पावे। उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास। उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग। सदा बसें पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मह जल आए खटाना। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान। श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जोबन वंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन प्रमावे। तन पूम का जो करे गुमान, सो मूरख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इया मुक्त आगे सुख पावे। धनवंता हुए कर गर्भावे, तृण समान कछ संग न जावे। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत। किसे न बदै आप अहंकारी, धर्म राय किस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटाय अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हाँ तारे, श्रम पावे सगले विरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह तो कैसे गवे। आपस कहो जो पला कहावे, किसे पलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोय। जब ए जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निचल ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। तब कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे। सहस कटे लख कौ उड़तावे, त्रिप न आवे माया पाछे पावे। अनिक भोग बिखिया के करे, न त्रिपतावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं कौ राजय, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजय। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करना है हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। जो बिच तीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग। बुझे देखे करे विवेक, अपह एक अपह अनेक। मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सदी रया समाए। आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब के साथ। आप तीनों आपन विस्तार, सब कुछ उसका ओहो करना हार। उससे पिन कहो किछ होए, थान थनंतर एक कै सोए। अपने चरित आप करना है हार, कौतुक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माह, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मध्य किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बख्यानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन परे, सोजन उदयनहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत के दुखन आर्जा घटे,
संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते कहो रखे न कोई, संत के दुखन स्थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करे, नानक संत संग निंदक भी करे, संत के दुखन ये मुख पवे, संतन के दुखन काग ज्यों लवे, संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए, संत के दुखन प्रियत ज्यों किरमाए, संतन के दुखन कृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाह, नानक संत भावे ता ओई भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिल टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा वियोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते करे, संत के दुखी को नाही ठाऊं, नानक संत भावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अज बीच के टूटे, संत का दुखी किसे काज ना पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान परमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये, संत का दुखी अंतर के चोथा, ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किस ना है, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावे तां ले उबार, संत का दुखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे इकेला, ज्यों बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, कित निंद का तुर ही पया, नानक जो किस पावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पुजै ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना त्रिष्टै कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, तया किर्त ना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर पिसके ओह करना हार, सदा सदा किस को नमस्कार, प्रभु की उस्तक करो दिन रात, जैसे त्यावो सास गिरास, सब कछ वर्त है किसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करना है हार, दूसरे कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे किस अपन नाम दे, बड़े भागी नानक जन से। श्लोक तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पहो जाय। अष्टपदी मानुख की टेक पृथ्वी सब जान, देवन कहो एक भगवान, जिस कह दिए रह अगाय, बहुर ना कृष्णा लागे आय, मारे राखे एको आप मानुख कह, किस ना ही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए, जिसका नाम राह कंठ परोय, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय, नानक दिगन न लागे कोय, उस मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटहें पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एक उत की ओह सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिनै निरंजन जान्या।
गुर प्रसाद अपन आप सुझै तिसकी जानो कृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अंधन कीर्तन केवल बख्यान व्यस्त मह सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा इसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसै न लाग है दूख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया शोधत शोधत शोधत कीजिया गुरु प्रसाद तब सब बूझिया जब देखूं तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी सारी सब सृष्ट अपने आप सगल में आप अनेक जुगत राचे थाप उथाप अविनाशी नाही किच खंड तारण चार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर है तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपके मेल लये कृपाल गुर का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किस करे सो प्रभ कह रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होवे सो होए करने हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा था तैसा दृष्टाना जिससे उपजे इस माह समाये वे सुख निधान उन्हों बन आए आपस को आप दीनों मान नानक प्रभ जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंधन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतिपाल सगल की चिंता जिस मन माहे किसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोई किस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल कट सो है तन मनता होए क्या को गर्भ जा सब किस किसका दिया दर्भ है अक्सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बह दातार इस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हाँ रोग नानक सो जान सदा अरोग यों मंदिर को थम मैं थमन क्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखान नाव चढ़ करे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू किसह चितार जो कछ करे सोई सुख मान पूला काहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहो रास लोभी पतंग राम नाम जब हृदय माह नानक पथ सेती कर जाह जिस बखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ खेप संतै संग चाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दरगह सोय एहो व्यापार बिरला व्यापार है नानक ता कह सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध कहो अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा मुड़ पागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनेक विगंते साधु राख है हर गुण गाए अमृत रस चख है ओट गही संतै दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया मृत कहो जीवालन हार भूखे कहो देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाहे सब किस किस का
ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਇਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਕੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਪਿਉ ਲੋਇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ਸਚ ਕਰਣੀ ਸਚ ਸਾਕੀ ਰਹਿਤ ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਪ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸਪਦ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਇ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ਆਪੇ ਦੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਵ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਯੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰ ਇਸਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰ ਪਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਸਥ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਟ ਨਾਹਿ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ ਕਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਕਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਪਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਪੂਰ ਰਹੋ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਂ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਰ ਬੰਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਕਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਪਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਤੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਤੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਕਿਸੇ ਸਭ ਭਰੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਦੱਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਤੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਤ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋਭਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਬੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਬੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਬਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਝਣ ਹਾਰ ਕਹੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
ਸਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹਦਾ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਂ ਹੈ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਂ ਹੈ ਲੇ ਬਸਤ ਗਦਾਈ ਤਾਕੋ ਤਿਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੁਝੈ ਬੁਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर कहो सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक कहो प्रभ पालन हारा सेवक की रख है निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर राख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राख है ताकि गत में से कोई न लाख है प्रभ के सेवक को ओ ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक जय जिस प्रगटाया निकी कीवी में कल राख है भस्म करे लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काट आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन करत बो पांत किसके करतब बिरसे जात मारे न राख है अवर न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करें रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडानी बारंबार बार प्रभ जपिए ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮੰਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮੰਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ प्रभ अपने जन कीनी दात करें भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने स्यों रहे सवाय जो हुआ वो वस्तु तो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने किसकी महिमा कौन बखानो किसका गुण कह एक ना जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक सेई जन पूरे मन मेरे इनकी ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता किसकी शरण सर्व सुख पावे किसके दर्स सब पाप मिटावे अवर स्यानप सगली छाड़ किस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना होगी तेरा नानक किस जन के पूजो सद तेरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुरु किसका नाव किस कै संग सिख उद्रै नानक हर गुण गाओ अष्टपदि सतगुरु सिख की करै प्रतपाल सेवक कहो गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख बुढ़पागी है सतगुर सिख का हल्त पल सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल संवारै गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस कहो कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचे सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए नेकामी किसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाव अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक कह आप नहीं कछ परम सहस यानप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़पागी पाइए सफल दर्शन तेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन
कर्ण आघाने मन संतोष आत्म पतियाने पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्टि पे खै वोए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे इस लय मिलाए जे बा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल ना पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनिक भगत बंधन नित करहे चरण कमल हृदय सिमर है सद बलिहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने यो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर तो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगाशे नानक परम मोह दुख तैते नाशे सप्त माहि ठांड वरताई अंध भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेश से पहु चुका निर्भव होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी चित पाई चूके परम गमन सोन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलातार जिन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगाश साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साधना चाले बिन भजन दिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार अस्पदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरो पाव सब नीत विसारो चरण कमल विद में उर्धारो कर्ण कारण सो प्रभ समरथ विद कर बहो नाम हर वथ एहो धन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस धन कहो चार कुंठ उठ धावे सो धन हर सेवा ते पावे जिस सुख कहो नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा कहो करे पलिन करनी सा शोभा पाज हर की सरनी अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रबोधो हर कह नाए जय जिस तावत आवे ठाए ताको विघ्न न लागे कोई जाके हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ बहु बिन सह पूर्ण होए आस भगत भाए आत्म प्रगास चित घर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपाव न छूटन हारे सिमरित शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाय मन बंशत नानक फल पाए संगना चालस तेरा तना तू क्या लपतावे मूर्ख मन सुत नीत कुटंब अर बनिता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्थार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए इस बुझा ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले ए आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहि जन्म जन्म के किल विष जाहि आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत घट पावो सार पूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाए हमें दिख फैल वोहे अचिंत बसै सुख नाल सास गिरास हर नाम संभाल छाड़ सियानक सगली मना साध संग पावे सच धना हर पूंजी संच
करो व्यवहार इया सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाह एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनिक विस्तार एक ते तहे एक अराध प्राचित गए मंतन अंतर एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिर फिर प्रभ आया पर्या तो शरणाय नानक की प्रभ बेनती अपनी प्रगति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल क्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जंत्रित ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुभर भरे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जान कहो प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया इस पुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहया सत्संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक पलती नाम सुनाए सो क्यों बिसरह जे काल न पाने सो क्यों बिसरह जे किया जाने सो क्यों बिसरह जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरह जे जीवन जिया सो क्यों बिसरह जे अगन में राख है गुर प्रसाद ओ बिरला लाख है सो क्यों बिसरह जे बिखते कड है जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरपुर है तत यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निध नाम मूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर यही सुहाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण तो होए भगत जना कह मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनास नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमुख हर के गुण गाए अनिक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ दियो निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका अपने ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहो कछ न दृष्ट चेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चेन ना जापत तब हरक सोग कहो किसे व्यापत जब अपन आप
आप पार ब्रह्म कब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कौ गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत परे तब कवन निडार कवन कत डरे अपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तें जन्म मरण को कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किसे होए जब अभिगाते अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप ही अचरजा नानक अपन रूप आप ही उपरजा या निर्मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैल कहो क्या धोता या निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अभिमान या स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कहो कीस या ज्योत स्वरूपी ज्योत सन समावे तै किसे भूख कवन तृप्त आवे कर्ण करावन करने हार नानक कत्ते का ना है शुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई या सर्व कला आपह परवीन तै देव कतेब कहां को चीन जब अपन आप उधार है तो सगन अपसगन कहां विचार है या अपन ऊच अपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जै अछल अछेद अपेद समाया ऊहा किसै बे आप माया आपस कहो आप आदेश क्यों गुण का नाही प्रवेश जे एक है एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता जै अपन आप पतियारा तै कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच दे ऊचा नानक आपस कहो आप पहुचा जै आप रचियो प्रपंच अकार क्यों गुण मह तीनों विस्तार पाप पुन तै तई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोचै

0: प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत किस प्रभ के सगली उत्पत किस पावै ता करे विस्तार किस पावै ता एकंकार अनेक कला लखी न जाय जिस पावै किस लय मिलाय तमन निकट तमन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाय नानक किस जन आप बुझाय सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आप देखन हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आमन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कह मध्य अलिप्तो रह जो किछ कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इससे होए सो नाही बुरा ओर कहो किने कछ करा आप पला करतूत अत नीकी आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग्राच ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए किसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक एहो जान जो जाने किस सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत कराया जन आमन का इह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक किस जन कहो सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाता नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदि पूरे गुण का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आशय नित त्यागो त्रंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के भर लियो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुसर सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महंत कै माथे नानक उदरे तिनकै साथी शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुख प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तक करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबसे ऊंच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान हर तन खार चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कै मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्ट केता ए फल इस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एओ निधान जपै मन कोय सब युग मह ताकि गत होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, किस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण काका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल काके कर्म, सब ते ऊच ताकि शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊच ताकि शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मर्द नो काम दी वासना नो सिमरे। अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे बेचवा जोन वल वल उतरे। ख्याल आया एक फुरना वासना दा उठिया ते कि दुनी चंदा बाप दान पुन घट करदा सी। लाहौर ची पढ़ते सुनने न पता नहीं सिखे पढ़ सुन के भी फिर बड़ा वड्डा दावा करी जांदे शगन चकान दा। असि पढ़ी भी जाने सुनाई भी जाने शराब की गल खंडन करनी हो कह देने कि दुनी चंद नू क्या देख तेरा प्यो का बिगाड़ बनिया बैठा किन्ने दिन हो गए ने कुछ मिलया नहीं। उन चरण पकड़ के क्या कहता वह तीन की जनानी है ना कुछ करने वाला बिगाड़ क्यों बन गया। कह लगे मरदिया समय किसी के कर तड़के की समैल आ गई चली वासना जाती। हुण प्यारियो उसने जदों वासना भी शरीर छड्या अगला जन्म बेसवा दा पर चेते रखियो जिहड़ी कीती कमाई सी व्यर्थ नहीं गई। उस वासना दे निक्के जिहे फुरने ने किन्ना सबर करा दिता परत के साधु आया उह घालना प्रफुल्लत होई उह नाम सिर अंदरों प्रगट होया। तोते ने नहीं प्रगट केवल कीता असल विच पूर्वली कमाई पुंगर के बाहर आ गई। प्यारियो गुरु मिलता नहीं उन्नी देर तक जिन्नी देर तक पूर्वला समा नहीं आउंदा। असीं इस चीज़ नूं उतावले हो के ना लईए। संसार की कोई भी चीज है समय तो पहला जे किते हुण असीं अरदास भी करने हैं कि सतगुरु कृपा करी आ चीज दे आ दात दे। कोई अरदासां करके धक्के ना लईआं हुईआं दातां दुखदाई हो जांदीआं ने। रजा विच मिली कोई दात सुख बन जांदी है। हुण जिहड़ी समय तो पहला कोई घटना वापरे सी उह दुखदाई ने। एक बच्चे का जन्म भी है निका जहा सैल है ते ओदे वर्गे सैल माता दे उदर विच प्रवेश करन ते उस विचों करोड़ां बंदे पैदा हो सकते ने पर करोड़ां नू वारी नहीं मिलती वारी केवल एक नू मिलती है। बाकी खिर जाते ने नाश हो जाते हुण वो निका जहा एक बूंद एक निका जहा सैल जे कहिए कि यह दो महीने बाद जन्म लै लै नहीं وہ دس دا نہیں پر سما پا کے جس دن سمے کر کے مکمل ہوتا ہے ادو جنم ملتا ہے تو بدائی نہیں ہوتی ہے سمے تو پہلا آیا ہوا کئی بار دکھدائی بن جاتا ہے۔ ہوں دیکھو سمے تو پہلا رت تو پہلا کوئی چیز پر بھولت ہے۔ ابھی پنجاب کی دھرتی تو آئے ہاں یہاں دنوں میں کنک گا لی ہے چیٹے جڑے ڈگے سن پہلی واہ دیتی ہے نال بھوک دیتا ہے ہوں جھونا لگ جانا ہے ते झोने कदी भी कणक की निकी जी सूई नहीं निकलनी अंकुर नहीं बुझना। जदों प्यारे कत्तियां दे महीने विच आपां झोना फंडना मुंजी फंड के घर ले जानी है ना ते अपने खेत भी जाके झाती मारियो निके निके कणक के दाने पुंगरे ये छे महीने पहला क्यों ना पुंगरे क्योंकि पहला इन्हां दे पुंगरन का समा नहीं आया। पुंगरन के उदो जो समा आएगा तो चेते रखियो जो कणक वड्डी दी कई बार नीवियां पैलियां विचों झोने के दाने पुंगरदे हुंदे समय तो पहला ते रुत तो पहला नहीं। इतने भज कह रहे हे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के जग और न जाए महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दु कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ये पद्धत ते मत चुका रे मन भेद भेद न जान पियो परता श्री दय गुरु अर्जुन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पाद लीलार उदय जिड़ी अर्जना करनी जन जिन्नी देर तक भाग प्रगट नहीं हो ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਰੂਆ ਜਬ ਲੋ ਨੀ ਭਾਗ ਲਾਲ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁ ਧਾਇਓ ਕਲ ਕੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਟ ਰੱਖੇ ਕਬੂ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ ਸਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਬ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਪਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਰਵਰੀਏ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ प्यारे जोगी जोर मारता खप गया कि मैं साधना की मेरे दर्शन करने वाले स्वर्ग मिलेगा। भाई जी ने अंदरों कुंडी मार छी लोग सदन आए अखीर से जोगी आप आया कह लगा बुआ खोल मैं तेन खुद दर्शन देन आया। बाबा तिलकू ने कहा जा तू अपना काम कर मैं रस्ते सा रुकना नहीं चाहता मेरा संबंध गुरु अर्जुन देव नाल है। कह लगा सारे लोग आ गए।

मेनू तेरा सहारा है, मैं तेरे सहारे खड़ा हाँ। तू अडोल है, तू डोलना नहीं ते मैं गिरना नहीं। मन लो किसी बंदे दे सहारे खड़ जाओ, जे अगला हिल गया ते तुसी ते डिगना ही नहीं। किसी दे मोढ़े ते हाथ रख लो, जे अगला थिड़क गया आपां भी हिल जांगे नाल। मैनू तेरी ओट है, तू बड़ा बड़ा है, तू डोलना नहीं तेरे सहारे मैं आ तां करके मैं गिरना नहीं। ना तुम डोलो, तू डोलना नहीं ते इस करके मैनू तेरा सहारा मैं गिरना नहीं। क्योंकि सहारा ही माड़ा नहीं ना तकिया, जिदी असी ओट लई है, जिदा असी आसरा तकिया है, वो बड़ा बड़ा है। असी ओदे नाल जुड़े हैं जिहड़ा सब घट विच व्यापक है, जिहड़ा सारिआं विच वसिआ होइआ है। ओदी समझ लै के ओदे नेम नूं, नेम कहीए निजम कहीए इक्को ही गल, नेम निजम, ओदे निजमां नूं समझ के जिंदगी जिउण रहे हां। इस करके सही चलते हैं, कानून विच चलते हैं, कुदरत का कानून जिहड़ा विधान बनिया निजम बनिया उहदे विच रहिंदे हैं, ते जिंद फिर सौखी रहिंदी। जे निजम तोड़िए फिर औखे होवांगे, रब जी का कानून तोड़िए फिर औखे होवांगे। तां करके तेरा सहारा, तेरी समझ का, तेरी सोच का, तेरे ज्ञान का सानू सहारा है। इस करके जिंदगी सोहनी बनी। आओ आओ रल मिल के पढ़िए, सुनिए, समझिए, विचारिए। जिंदगी विच कुछ मोड़ ही होंदे आ जी, आनंद कारज कराउण ते अद्धा घंटा लगदा, पर बंदे की जिंदगी उस दिन तो बाद टोटली चेंज हो जाती। बंदा जिम्मेवार बन जाता, यार बेली बदल जाते, बहनी उठनी बदल जाती, सोच ही बदल जाती। अद्धे घंटे ने टोटली लाइफ चेंज कर देनी होंगी है, और आनंद कारजा का अद्धा घंटा लगता। बंदा टोटली सोच ही बदल लेता, नहीं सी व्याया कला सी, जिथे मर्जी बैठा, जिथे मर्जी जिधर तो मर्जी तुर गया, पर जदों अद्धा घंटा व्याह हो गया, गृहस्थी बन गया, तो सोच ही बदल। अद्धे घंटे ने लाइफ चेंज कर दी। इस तरह आ घड़िया होंदिया जी, कई बार कई व्याह हो जाते, इतने सुरत जीव रूप इस्त्री का पति परमेश्वर नाल मिलाप हो जाता, इतने आ के कई की जिंदगी बदल जाती। अद्धा घंटा घंटा चेंज ही कर देता, पर जे कोई चेंज करना चाहे, जे कोई बदलना चाहे, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। व्याह हुआ मेरे बाबला, गुरमुखे हर पार। फिर व्याह होए की निशानी की है? अगलियां पंक्तियां अज्ञान अंधेरा कहते हैं। जिदी जिंदगी तो अज्ञानता चलेगी, अज्ञानता मतलब रब तो बिना हुण दूजा तीजा चौथा दिसदा ही कोई नहीं। किसे मड़ी मसाणी कबर बंदे देहां दा खेड़ा ही खड़ता। बंदा सर्व घटां विच वसे, परमात्मा नाल व्याया गया, विची ही ते निशानी, ते विचोला कौन बनिया? गुरु बनिया विचोला। जीव रूप इस्त्री नूं परमात्मा नाल मिलापता, पर सच्चे ज्ञान दे जरिए। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया। हर रतन पदार्थ लादा, वो असली पदार्थ, वो घटा विच वसिया, लभ गया, जिंदगी ही चेंज हो गई, टोटली लाइफ बदल गई।
ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦਾ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲਵੇ। ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਸੁਰਤ ਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਏ ਹੋਰ ਸੀ ਮੁੜੇ ਹੋਰ ਟੋਟਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਦਲਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।

0: देखे मुझे।
1: आओ असली दर्शन की सुनो, असली दर्शन ने गुरु जो कहिंदा ज्ञान जेडे गुरु साहब दे बचन है साडी सुरत विच, उहनां दी विचार करी असी बाणी दी विचार करके सोचण लग जाईए मैं किथे गलत हां, मैं ठीक किवें होणा, मैं बदलना किवें। आओ जिन्हां वीरां ने भैणां ने अमृत छकना पिया दिओ, दाखला नहीं लिया जिन्हां ने, वह मन बनाओ। कल नूं गुरुद्वारा साहिब मेरा ख्याल इत्थे ही सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा अटखर साहिब सामने गुरुद्वारा है, पंडाल के नाल ही है। इत्थे कल अमृत का बाटा तैयार होना है, पंज प्यारे शाम नूं पंज बजे आ जाने ने, पंज बजे तक एसी स्नान करके साफ बस्तर ते चारे ककार बाहरले पंजवें के जेड़े तकरीबन ठीक ने अपने मन बदल लो। अज तक गलती कई है, इदा दे वीर भरा चंगे भले है, कोई गलती नहीं, जीवन बड़े सोहने हैं, बस एवें एवें दूर दूर जाई जांदे। ते आओ आपां आइडेंटिटी अपनी सांभ के रखिए, खंडे दी पौल प्राप्त करके जो साडी मर्यादा है उहदे विच आईए। बाकी धर्मी कोई भी हो सकता, मैं फिर बेनती करता, धर्मी मन का विषय, धर्म मन कि प्रैक्टिकलिटी कि धर्मी से वो है, यह साडा कौम का कॉन्सैप्ट है। कौम कौमीयत साडे विच आवे, असी एक बाटे चो अमृत छकिया, गुरु गोबिंद सिंह पिता साहब कौर माता साहब कौर नूं माता कहने, गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु हैं, असी एक बाटे च छक के भरा भरा बने, इहदे लई असी तैयारी करिए। यही मेरी बेनती वीरां भरावां भैणां नूं है, मैं फिर बेनती करदा, कुछ नहीं जी मंगदे, इह ते गल्लां बनाउण वाले बनाउंदे वी इन्ने लख लैंदे आ, फिर आउंदे आ। बड़ी वारी इलाके च दवान लगे, मानसा लगे, इधर होर भी कई पिंडां च प्रोग्राम हुंदे आ, कदे इदां दी गल नहीं, तुसीं बस सुनो समझो ते अपनी जिंदगी च लागू करो, जे तेल भी नहीं पवा सकोगे ते तां वी कोई फर्क नहीं पैंदा। असी तो आ ही गए हैं, जिहड़ा अगे भी पाया वह भी संगतां दा ही है, तां करके मैं ये नहीं कहिंदा भी सानूं आ चाहिए तां असी नहीं, तुसीं सुनो समझो मनो जिंदगी च लागू कर लो, पर सब तो जरूरी यह है। सो बहुत धन्यवाद है, मेरे लिए खुशी वाली गल यह है कि बड़े टका नाल तुसीं कल भी सुनिया अज भी सुनिया, मेरे लिए ये बहुत खुशी वाली गल। कल नूं मैं बेनती करांगा जेडे पंडाल वाले वीर है भी पंडाल नूं लम्मा ते ज्यादा ना करियो, फिर ते बहुत दूर चले जाना। अज भी मैनूं लगदा भी घट तों घट 400 फुट तक दूर तक 400 फुट संगत बैठी होणी, ते कल नूं आपां पंडाल नूं चौड़ा कर लो, 15 फुट इधरले पासे वधा लो, 15 इधर, एक एक टेंट वधा लो, इधर नूं भी वधाओ, इधर नूं, दोवें पासे जगह है थोड़ी थोड़ी, खुला कर लो पंडाल, पहला ही बहुत खुला, थोड़ा जिहा होर खोल लीए। सो सारी संगत नूं बेनती है बस चढ़ के आओ ते आपां गुरबाणी नाल जुड़ीए। कल आपां कुछ गल्लां जरूरी हन नाल नाल आपां कल सुना समझांगे ध्यान नाल। सो गज के हुण आपां आनंद साहिब बोलो अरदास जुड़दे आं, हुक्मनामे सुनदे आं, गुरु जी जांदे आ फिर जांदा, काल ना करियो जिथे इन्ना चिर बैठे हो टका बना के रखे। ते जिवें अज आपां शुरू कीता सी 7:35 ते कल नूं वी आपां इस इक टाइम शुरू कर लांगे, अज मैं 7:25 ते आ गया सी इत्थे वेले नाल, कल भी आपां कोशिश करांगे भी टाइम नाल आ जाइए ते वेले नाल फिर 10 बजे नूं समाप्ति हो सकदी है। गज के आनंद साहिब च बोलो, कोई रसना वांझी ना रहे, सारियां संगतां सारे प्रबंधकां दा सारे सेवादारां दा नगर निवासियां दा सब दा धन्नवाद है, ट्रालियां लियाउण वाले वहीकलां ते जिहड़े सेवा करदे भाई सारिआं दा बहुत धन्नवाद। कल वध चढ़ के इको दिन रहिंदा है ते मन बना लो, बाकी भाई जिन्हां ने दाखला लेना आओ ते आपां कल 5 बजे जिन्हां ने अमृत छकना है वह भी वध तों वध नाम लिखाओ। आओ बाणी बाणे दे धारनी होइए, सतगुर जी की सिख्या ते चल के जीवन सफल करिए। गज के आनंद साहिब बोलो, कोई रसना वांझी ना रवे, नानक नाम तेरे भाणे, राम कली मोहला तीजा, आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन्ना मत्था नहीं टेकिया टेक लो, जिहड़े रात बह गए सी नमस्कार कर लो, गहने मोबाइल परस संभाल के रखियो भाई जदों जाओगे, भीड़ दे विच कई बंदे शरारती आ जांदे आ, परस मोबाइल संभालियो जरूर,
2: بیبیو گہنے سنبھال کے رکھے ہو پرس موبائل ضرور سانبھے ہو بچ شرارتی بندے متھا ٹیکن والے ہو جڑے تسی خیال رکھیو بھائی بچ کئی شرارتی آ جاندے ہیں خیال رکھیو جد کے نام سے

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु